सुकून में है, सुकून कर रहा है। अपने खाविंद को खाना दिया, उसे पानी पिलाया, और रात में जो खाविंद का हक होता है बीवी पर, उस हक को भी अदा किया। सुबह के वक्त, फजर की नमाज के वक्त, जब उसका खाविंद मस्जिद की तरफ जा रहा था, तो उसे इस अजीम औरत ने, इस अजीम बीवी ने, आज मेरी बहनें सुन ले, कहा, ए बुतलहा, अगर कोई शख्स तुम्हारे पास कोई चीज अमानत रखे और वो उसे तलब करे, उसे देनी चाहिए कि नहीं? देनी चाहिए। किसी को शक है इस पर? अमानत हो या उधार हो, कोई शख्स आपके पास देता है, जब वो तलब करता है, उसे देना चाहिए कि नहीं? देना चाहिए। उन्होंने कहा देना चाहिए। फिर फरमाया कि आपके बेटे को अल्लाह ताला ने बुला लिया और वफात पा गया, अल्लाह ताला की अमानत अल्लाह ताला ले ली। तो शदीद गुस्सा हुए, तूने मुझे बताया ही नहीं, मेरा बेटा रात से मरा है, मैंने खाना भी खाया है और मैंने हम बिस्तरी भी की है, और तूने मुझे बताया ही नहीं। मैं भी जाके प्यारे पैगंबर को खबर देता हूं। घर में मसला हुआ, उसका हल है, हल की तलाश के लिए प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जाते हैं। आज हमारे घर में मसले होते हैं, हमारे पास जो हल होता है, नऊज़ बिल्लाह, या तो हाथ होता है या तो पांव होता है या तो बदजुबानी होती है। अगरचे कुरान मजीद हमारे पास है, सही हदीस हमारे पास है, शरीयत का इल्म हमारे पास है, उलमा मौजूद हैं, हम कभी जरूरत नहीं समझते कि हम किसी से पूछें। बहरहाल नमाज पढ़ी, नमाज के बाद प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया, अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी अहलिया ने मेरे साथ ये किया। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हल जो बयान किया है, बड़ा प्यारा और मुख्तसर सा हल है। फरमाते हैं, क्या रात को हम बिस्तरी हुई है? उन्होंने फरमाया, जी हां हुई है। तो प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला आपको नेक और सालेह औलाद अता फरमाए, बेटा अता फरमाए। वो हमल ठहर गया उस रात का, अल्लाह ताला ने बेटा भी अता फरमाया। इस हदीस के रावी जो वो फरमाते हैं, मैं आंखों से देखा है कि उस बेटे के 9 बेटे थे, सारे के सारे हाफिज कुरान थे, आलिम दीन थे, उस एक बेटे। वापस चलते हैं उस अजीम औरत की तरफ। औरत कितनी कमजोर होती है। सब्र यह था कि रो धो के बैठ जाए और अपने खावन को जाहिर ना होने दे, खाना भी ना खाए और गमजदा होकर एक तरफ बैठी रहे या लेटी रहे। उस औरत ने खाना भी पकाया, वहां पर इस तरीके से फास्ट फूड सर्विस नहीं थी कि 2 मिनट में 10 मिनट में खाना आ जाएगा, नहीं, खुद पकाया। हिम्मत देखें औरत, मुसीबत है लेकिन देखें, और खाविंद को दिया और उसे महसूस ना होने दिया कि कुछ हुआ है घर के अंदर, कोई मुसीबत आई है घर में। और इससे भी बढ़कर बात, खाविंद का हक भी अदा किया, इस दुआजी हक। फिर भाई कोई आसान बात है? कोई कर सकता है? सब्र वाले नहीं कर सकते, लेकिन सब्र जमील वाले कर सकते हैं। और उस सब्र जमील पर अल्लाह ताला ने क्या अता फरमाया है, एक बेटा लिया, उसके बदले में बेटा भी दिया, और यानी एक बदले में 10, एक बेटा और उसकी 9 औलाद। ये सब्र जमील है। और सब्र जमील का किस्सा बेहतर जानते अय्यूब अलैहिस्सलाम। अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ मुसीबतों में डाला है, इम्तिहान लिया है, कुछ ना बचा, माल भी चला गया, औलाद भी चली गई, एक बीवी भी चली गई, सिर्फ एक बीवी रही, सेहत में तकलीफ हुई, सेहत